0: 1914 ना नेहरू।
1: बिल्कुल
0: Why hey in here, but no major problems.
1: बिल्कुल